लस मेरा रेली माई किन होला, लस मलस लस मेरा रेली माई किन होला, लस मलस लस मेरा रेली माई किन होला। पर्ख पर्ख ए मेरा चेली हो।

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट विटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: 6.9 इंच को शानदार डिस्प्ले, AI पावर्ड कैमरा, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 में 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro में 6000 mAh पावरफुल बैटरी के साथ थप अत्याधुनिक विशेषता हरुले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।
1: मध्य पश्चिम टाइम चेक, यति बेला बिहान को 11 बजेको छ।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंदको आवाज जो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोई कसैलाई रोग लागे गोखा अस्पताल जाऊ। सर्जन, फिजिशियन, हाड़ जोड़ने, नस

0: वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा फ्री इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड।
1: नाक कान तथा घाटी रोग को उपचार सेवा अब सुवर्ण मेडिकल हल घोराही दाङमा।
2: नाक कान तथा घाटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुवर्ण बुढामगर द्वारा प्रत्येक दिन बिरामी चेक जाँच भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सम्बन्धित रोगका बिरामीले समयमै सम्पर्क गरी आफ्नो रोगको पूर्ण निदान गर्नुहोस्।
1: अन्य सेवाहरू
3: हाट जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण तिमिल सिन्हाद्वारा दैनिक बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
4: सुगर थाइराइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर एसएन यादवद्वारा प्रत्येक महिनाको दोस्रो शुक्रबार बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
3: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दीप पोखरेलद्वारा दैनिक बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
1: प्रत्येक दिन डाक्टर नवराज केसीद्वारा बिरामीहरूको चेक जाँच तथा उपचार सेवा।
5: फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ।
6: सम्पर्क सुवर्ण मेडिकल हल घोराही 14 आर्मी रोड। सम्पर्क फोन नम्बर 082-561-694। सम्पर्क मोबाइल नम्बरहरू 98-578-30-145, 98-478-30-153 र 98-49-41-944।

0: अस्पताल में अनुभव प्राप्त वरिष्ठ डेन्टल कंसल्टेंट ऑर्थोडोन्टिक डॉक्टर विपिन भूषाल सीएमएस चितवन डेन्टल सर्जन डॉक्टर रचना घिमिरे डेन्टल सर्जन डॉक्टर आस्था खत्री द्वारा बिरामी को दैनिक रूप में जांच तथा उपचार भइरहेको छ।
1: सावधान उस्ता उस्तै नामबाट नजुकिनुहोला है। बीआर डेन्टल में दाँत मिलाउनका लागि सम्झनुहोस् डाक्टर विपिन भूषाल।
2: सम्पर्क बीआर डेन्टल न्यू रोड साझेदारी टोल यामाहा शोरूम नजिकै।
3: सम्पर्क फोन नम्बर 0825902222।

स्थल दुई स्थानमा हुईलगलग वृहत सिकलसेल रोगको परीक्षण शिविरमा सिकलसेल रोग तथा थालसेमिया रोगको परीक्षण तथा परामर्श सेवा डेजिना राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टर जनार्दन पन्थी जानकारी दिएरखल। घोराई दशको वडा अध्यक्ष दीपक पाण्डे, घोराई सातको वडा अध्यक्ष खोपीराम चौधरी से थारू समुदायमा बढ़ी मात्रामा देखा पर्न गैलक सिकलसेलको परीक्षण कलाको प्रतिष्ठान से सहकारी कैकन शिविरको आयोजना करगिलक जानकारी दिएरखल। शिविर हन अधिकतम फलदायी बनाएकला ओडा ओडामा रलक टोल विकास संस्था, वन समूह, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय, मतौ, स्वयंसेविका, स्थानीय राजनैतिक दल लगायत स्थानीय सरकारवाला सबको जहिनलाग परिचालन करगिलक फे बटवा रखल। नेपाल हन सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ग्रे लिस्ट अफ से बाहर जिना समय सीमा लघु आईबेर अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी निकायसे नेपालको प्रयास पर्याप्त निहुलक बतुवा रखल। सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रणका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एटीएफ एसियाली एकाई एपीजीको प्रतिनिधि हुकनक्से अर्थमन्त्री सहित उच्च सरकारी अधिकारी हुकनक्से भेटकन कालो सूचीमा पर सेक्नासम्मको चेतावनी देलखुइट। एपीजी टोलीसे सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानमा

राष्ट्रीय निगरानीकर्ता हुँ कनक ध्यानमा परल बा तितो पत्र बोर्ड ओ बीमा बोर्ड जस्त नियामक निकाय से नेतृत्व विहीन करलकम गम्भीर प्रश्न उठल बा कानून बनिना काम ओ अकर कार्यान्वयन बीचक खाडल से समस्या देखा राखल। नेपाल 2081 साल फागुन 9 गते से एफएटीएफ क ग्रे लिस्टमा परलख हो। ग्रे लिस्टमा रहबेर अन्तर्राष्ट्रिय विपत्ति कारोबारमा थप शुक्ल बैंक ग्यारेन्टीमा कठिनाई र लग देशको साखमा नकारात्मक असर प्रथा। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम अग्लेसले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एपीजी क इन्टरनेशनल क अपरेशन रिभ्यू ग्रुपको छलफलमा नेपाल हन ग्रे लिस्टमा कसे बाहेर निकार सबको उपाय अवलम्बन गर्जिन प्रतिबद्धता जना राख्ल। अखिको अवस्था पाचक 30 वर्षको कुशाक सन फल हुलक बटुती लौ सरकार गठन पाछा सुशासनको प्रयास हुलक दावी फे उहाँकै राख्ल। उठा ताजुक थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह काल संज्याफे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखसक खबर मसे समाचार कक्ष कर्षकको संग्रहसँग मैं शालिक राम चौधरी विदाहीटू रिरी मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज जो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोई कसैलाई रोग लागे गोर्खा अस्पताल जाऊ। सर्जन, फिजिशियन, हाड़ जोड़ने, नसा, प्रस्तुति, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया, बाल रोग।

0: 94.4 मेगाहर्ज मा तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम।
1: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक टी लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाकबन्द जीव दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटी को शक्ति ओखती आयुर्वेदिक टी मात्र रु 50 मा।
2: कुराही को लागि आधिकारिक विक्रेता भूषाल स्टोर हस्पिटल रोड कुराही दाङ फोन नम्बर 0825162110। थप सम्पर्कका लागि हिमालय स्टोर बाल मन्दिर अगाडि निरज स्टोर सब्जी मण्डी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसञ्चार देखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छानामुनि।
4: वरिष्ठ हार्ट जोड्ने तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली घोराहीमा।
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू:
4: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हार्ट जोड्ने सम्बन्धी अपरेशन सेवा।
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
7: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
8: नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
6: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
8: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसीद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
9: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्यद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
6: साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
3: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली, सडक विभाग ओह्रालो, घोराई दाङ। फोन नम्बर 0825362118।

थप जानकारी का लागि राप्ति अटो इंजीनियरिंग बजाज शोरूम शहीद गेट घोराही दाङ संपर्क फोन 082562423 संपर्क मोबाइल नंबर 98578301 98478333 र 98686 37244